एसीटी देसी पे आज का शो है रैंडम स्पेशल. व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम स्पेशल? लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रैंडमली हमारे साथ होती रहती हैं और हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना कंट्रोल कर सकते हैं हम लाइफ में या नहीं कर सकते. तो इस थीम पे मैंने एक शो बनाया है आपके लिए जिसमें मैंने अपनी जो वास्ट डेटाबेस ऑफ सॉन्ग्स है उसमें से रैंडमली बहुत सारे सॉन्ग्स उठाए, उनको मिक्स किया. किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ फास्ट है, कुछ स्लो है, कुछ अजीब से ही हैं, लेकिन एक शो को मैंने पुट टुगेदर किया है. तो ज़रूर सुनिए और मुझे बताइए कि ये रैंडमनेस आपकी लाइफ में आती है और आप उसको कैसे झेलते हैं और ये रैंडम एपिसोड आपको कैसा लगा. आप है मेरे यानी आपके अपने देसी आज विकास के साथ और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनरा और 4 इन इंडिया ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो. नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम.

0: आशा करता हूँ ये रैंडम एपिसोड आपको पसंद आया होगा या आपको कुछ अजीब सा भी लगा हो सकता है। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो मुझे बताइए, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी मुझे बताइए, और मुझ तक शेयर कीजिए कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में रैंडमनेस को झेलते हैं या पास करते हैं। मुझे आपके विचारों का और आपकी फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो डू रीच आउट टू मी थ्रू माई फेसबुक पेज विच इज़ ACT Desi FM, या आप मुझ तक मेरी वेबसाइट जो है content-artist द्वारा भी पहुंच सकते हैं। जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा। कीप द रैंडमनेस अलाइव, स्टे काम एंड एक्ट देसी।
1: सब खाना खा के दारू पी के चले गए।
2: सब खाना खा के दारू पी के चले गए
3: चले गए चले गए